करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चेन अर बरन जात

सीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई जब लो नहीं पागल लार उदय तब लो प्रमते फिरते बहुत आयो।

0: वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ राम कली मल तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दो ता गावरी केरा मन जनी वसाया कह नानका आनंद होआ सतगुरु मैं पाया।

संत साजन भय सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया परपूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनद तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत मात दिवस रात दुदाई दाया खेल सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म दूर करमी आप वापणी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजरे केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया।

तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहे गुरु।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सवी सहाय। अर्जन अर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै शब्द जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौन दयावै ताए। सब थाई वे सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई वे सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ ददार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाई देख के अणजठ कीता। तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाई। तना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खाल

पौड़ी महाप्रयान उद्यान नगर कर मनिया चोट समगरी पेख सच कर जानिया का।

ਖਾਲਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਦੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਸਨਾਤ ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਸ ਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ ਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿਉ ਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈਂ ਕੌਂਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ
तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में ही सिमरन करया सब निदान दस्या अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया सब निधान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब ते आवहीं तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आवहो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घड़ घड़ अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक बेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैना हर ते आया जी तिन टूटी जमकी फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तपतापहें बयंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमर शास्त्र जी कर किरिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब पाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सिका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहें सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया
जिसनों कृपा करहें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरिया ओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाही, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जानाही सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद मिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने हैं सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़ भैले निवासा, पाणी पावक तिन्हे किया, पंकजो मां पग नहीं चाले, हम देखा तहें डूबी अले, मन एक ना चेतस मूड मना, हर बिसरा तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पयाओ, प्रणवंत नानक तिनकी शरणा, जैना तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मेल साध संगत भाज केवल नाम, श्रंग जाम लाग पवजुल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो शर्मा, इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाव पाई, हमरी करोहा दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दे मुहे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबेर इनको आए संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिए, चुन चुन शतर हमारे मारिए, आभा दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निबरिए, हो जाओ सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करि हो रक्षा,
राख लियो महे राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दसकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहें हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पल मो बद कियो घट घट गए अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने घट घट के पढ़ पढ़ की जाने जब दर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तव देहे अपारा जब आकर्ख कर तुह कब हूँ तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर अलम ड्रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनीन अनाद संभ ताका मूड़ उचारत पिता जाको पीव ना पावत बिदा ताको कृपाहण अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव ड्रंकार का चीनत न भिव आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जय पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो रब कहीं पूपा अंड जेर से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आ जोगा स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पत्ता सकल मलेच करो रणगाता जे आस तुझे तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख्त हवाए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बात है ताकि काल निकट नह है रक्षा हुए ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला कृपा दृष्ट तन जाहे न हरिओ ताकि ताप तन कमहे हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई
दुष्ट सह शवै सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा कल फांसते ताहें उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दर्द दुष्ट दुख तेरा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दल हो बारी। सर्वठोर हो साई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी। सर्वठोर हो साई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद स्वभाय बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो। सिरियस पान

दोहरा सगल दोहार कौ छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा राम कली महला तीजा अनन एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सह सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किच है जिस दे है सो पावे सदा सिफत सलाहा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जैनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहों जिस दियाँ एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको सेना हर के लागे कह नानक तस कोआ तित कर अनाद बाजी आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी

मुनि कहते पवित्र सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनि कहते पवित्र सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे। मुंदामणि महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अदारो जे को खावे जे को भुंचे तिसका होए उदारो ए वस्त तजी न जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया

बसंत सरग लोक कह जित ते पृथ्वी नव खंडन है। बिसरंत हर गोपल है नानक ते प्राणी उदयान भरमण है। कौतक कोड तमाशिया चित नया बस नो नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई था। पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मन्या चोट समग्री पेख सच कर जन्या। काम क्रोध अहंकार फिर है दिवन्या सिर लगा जम दंड पछतन्या। बिन पूरे गुरुदेव फिर शैतन्या। काम क्रोध अहंकार फिर है देवन्या सिर लगा जम दंड ता पछतन्या। बिन पूरे गुरुदेव फिर शैतन्या। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

ओंकार सतगुरु प्रसाद असा महला चौथा शांत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु

को ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवै अकाल मूर्त अजुनी सह पंगुर प्रसा आसा महला पहला वार श्लोका ना श्लोक पी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जी की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी।

0: की फतेह।
1: अगम अनंत अनाद आद जिस कोई ना जाने, शिव बिरंच तर ध्यान नितह जिस बेद बखाने, निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, भंजन गड़न समर्थ तरण तारण प्रभ सोई, नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा।

दास चित है बसे, गुरु समरथ गह करिया, ध्रुव बुद्ध सुमत सम्हारण को, फुन त्रम तुजा फह

तारण तरन सम्राथ सबै बिद कुलै समूह उदाहरण सो। गुरु सम्राथ गह करिया त्रुबुद्ध सुमत सम्हारण को फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को मथुरा।

नाम बोहित बड़ो काल में पव सागर पार उतारण को संतत ही सत संगत संग सो रंग तेजस गावत है त्रम पंथ तरयो तरनी तरया रहे लिवतार नतावत है मथुरा पन पाग पले उनके मन इच्छत ही फल पावत है रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथा अत बड़ सो पर सदा सब बिदरत नागर संत मरार करह कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल युग दुर्त दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर जाको मुन ध्यान तरे फिरत सगल जुग कबहू को पावे आत्म परगास को बेद बाणी सहत बिरंच जस गावह जाको शिव मुन गह नत जा।

जटा झूठ भेख किए फिरत उदास को, सो तिन सतगुर सुख पाए किरपा तारी जी, नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यो लोक पर गासे, देखत दरस पटक भ्रम भजत, दुख पर हर सुख सहज बिगासे, सेवक सिख सदा अत लुभत, आलस मुह ज्यो कुसम सुबासे, विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत, गुरु राम दासे, विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साच

तुम मल्यागर प्रगट सुबास त्रू प्रहलाद कबीर तिलोचन नाम लैथ उपजो जो परगास जे पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुर रामदास जिन सत गुर सेव पदार्थ पायो निस्ब

मल जन्म जन्म दे कटिया सजन सचा पात साह सिर साह जिस पास बैठिया सोही सपना लाग साहो जिस पास बैठिया सोही सपना

पूजा अग्रबा सबहकार जोगी सुनते आवन जेते अलख नाम करता सुख मूर्त नाम रंजन काया काया का सतियां मनसन।